0: Les meilleurs hits en Dordogne sont sur Zoom, la radio made in ici.
1: फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे तुम करना चाहिए जाओ।